0: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज प्रगति को संवाहक।
1: सबै रोगहरूको विशेषज्ञ सहितको अपरेसन सेवा प्रत्येक दिन एभरग्रीन अस्पताल परासीमा। हाड जोर्नी नसा तथा ढाड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विशाल श्रेष्ठ प्रत्येक दिन बिहान 7-8 र साँझ 7-9 बजेसम्म। जनरल सर्जन तथा ल्याप्रोस्कोपिक डाक्टर अब्दुल हकिम खान प्रत्येक दिन दिउँसो 3-7 बजेसम्म। मुटु छाती पेट सुगर किडनी थाइरोइड विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक दिन बिहान 10-4 बजेसम्म। नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अफताब खान प्रत्येक दिन दिउँसो 4-9 बजेसम्म। एनेस्थेसियोलोजिस्ट तथा पेन फिजिसियन डाक्टर सबा खान दिउँसो 3-7 बजेसम्म। बाल रोग विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक दिन दिउँसो 3-7 बजेसम्म। महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक दिन 7-9 बजेसम्म। रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर केशव पौडेल प्रत्येक दिन बिहान 9-5 बजेसम्म। जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा प्रत्येक दिन बिहान 9-6 बजेसम्म। साथै हामी कहाँ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, मुटुको भिडियो एक्सरे इको सेवा, मुटुको जाँच ईसीजी सेवा, डेलिभरी सेवा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल तथा भिडियो एक्सरे सेवा, बिरामी भर्ना सेवा, फार्मेसी सेवा, साथमा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि एभरग्रीन अस्पताल प्राली परासी बुद्ध चोक सम्पर्क 078520073 र मोबाइल 98570046486।

0: छन्।
1: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तिन तिन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
2: जीवनको हरेक रंगमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
3: परासी क्षेत्र में पहिला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी,
4: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता ईसा साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भर्ना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
3: इतने भर नहीं, सब साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
5: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड, मोबाइल नंबर 9861745737।
1: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 9857023031।
6: डेंगू रोगबाट बस्नका लागि सर्वसाधारणमा अनुरोध। डेंगू रोगको महामारी धेरै जसो ठाउँमा प्रकोपको रूपमा फैलदै गएकोले यसको लक्षण देखिना साथ स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराइहालौ। लक्षणहरू: उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी वा मांसपेशीमा अत्याधिक दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, गिजा नाक मुखबाट रगत बग्नु, शरीर चिलाउने आदि।
7: डेंगू रोगबाट बस्ने उपायहरू: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्ने, पुरा हुला भएको लुगा लगाउने, झुल भित्र सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने गरी जाली लगाउने, घर आँगन र वरपरको सफाई गर्ने, पानी जम्ने भाँडाहरू, टिन, खाली बट्टा, गमला, फुलदानी, टायर आदिमा पानी जम्न नदिने, गमलाको प्लेट, फुलदानी, कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको 2 पटक फेर्ने, घर वरपर रहेका पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुर्ने र ढल, पोखरी लगायत धेरै पानी जमेको ठाउँमा जलेको मोबिल वा मट्टी तेल हाल्ने गर्नु पर्दछ। थप जानकारीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासी।
8: जता दौडिए पनि त्यस्तै, यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
9: लौ दाइ पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
1: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
8: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
1: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी, सुनोवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 0785208181।
8: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 0785905088।
3: हत्तेरिका लास्ट गर्मी लगता यार, लगता बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सकै। इहिमे मोबाइलो फुट गइल बा। लेकिन
5: का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिला था।
4: जी हाँ, धीरज टेरस परासी में हर एक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एलईडी टीवी फ्रिज कूलर पंखा एसी हीटर लगात के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
0: संपर्क धीरज टेरस रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल मोबाइल 98472220 और 98015222020।

0: ए चाचा देखा न, हमार आखिया के नजरिया कमजोर हो गई बा का हो, हमके तो एकदम धुधुराह लौकत।
1: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा। आखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गई बाड़ी।
2: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा। अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
3: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु आँख में मास उभरल टेढ़मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
0: संपर्क भगवती नेत्रालय रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड आँखा अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 98672285015 और 98572215।
4: सुनत बाड़ा हो, किए जन काहे आजकल हमके साफ से नाय लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का।
5: हत तेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता, अदानी को साफ से नाय फरियाता।
3: भाई देखा, तू सबके ही कुल समस्या बाते, एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
0: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के बंद भइल आँस के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
1: समय में आँख जांच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785201046 और 0785210033।
6: ओहो, कस्तो सफा र चमकिलो कपडा, पक्कै पनि तिमीले गाई छाप सरफले नै धोएको हुनुपर्छ।
7: हो त, आज भोलि गाउँ सहर जता ततै गाई छाप सरफ नै प्रयोग गर्छन्। साथै यसको खरिदमा साइकल उपहारको पनि व्यवस्था छ। अनि सुन्नुहोस् त, कपडाको दाग र धब्बा हटाउनलाई त एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वास प्रयोग गर्नुपर्छ नि। जसको खरिदमा आइफोन उपहारको पनि व्यवस्था छ। विचार गर्नुहोस् है।
6: हजुर, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरी नेपाली हुनुमा गर्व गरौं। उत्पादक साफी सरफ उद्योग मायादेवी गाउँपालिका 1 पाकडी कपिल वस्तु। सम्पर्क 98264848200।
8: नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको अत्यन्त जरुरी सूचना। नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य संघको चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 लागि ₹1,00,000 दुर्घटना बीमा सहित सदस्यता दर्ता तथा नवीकरण कार्य निरन्तर भइरहेको हुँदा नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र सदस्यता नवीकरण गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। विस्तृत जानकारीको लागि 0785201124 र 98472919011 सम्पर्क गर्नुहोला।
9: सुनत बाड़ा हो, हाई टेढ़ मेढ़ दातावा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, अब तनिको कहूँ जहूक मन नहीं करला।
5: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
0: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा।
1: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर ₹1,000 में लाइफ टाइम वारंटी। दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के ₹130 और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
9: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559745436।
10: के भएको यस्तो, नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु, थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त।
11: इसुमी, पहिला त मोबाइल कम चलाऊ, दोस्रो आँखा चेक गराइहाल क्या।
10: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि।
7: त्यस्तो होइन नि, अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न।
11: हो, रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरव आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ। आधुनिक प्रविधि फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन, आँखामा मासु पलाएको अपरेसन, बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने, बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ।
3: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
11: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली, रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 98119-0697 र 98695-34254।
12: अरे वाह, देखा थी बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
5: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
12: चला, इतना बढ़िया सोच तोहर रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
13: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट सीपीवीसी पीवीसी पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
14: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस मेन रोड ठूठी बारी साहिल टायर हाउस के बगल में प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 91 20 42 52 31।

0: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
1: अब तपाईँको टोयलेट जाम भयो वा भरियो भनेर तपाईँ भौतारिनु पर्दैन। मात्र एक कल फोन राम बच्चन सेनेटरीलाई गर्नुभयो भने हामी तुरन्त आइहाल्छौँ।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: अत्याधुनिक भ्याकुम क्लिनर मेसिन द्वारा गन्ध रहित तरिकाले सेफ्टी ट्याङ्की सफा गरिने,
2: विद्युत नभएमा पनि जेनेरेटरबाट काम गरिने।
3: थप जानकारीका लागि सम्पर्क राम बच्चन सेनेटरी, रामग्राम 1 परासी।
4: सम्पर्क मोबाइल 98069-70-72, 98000-70-75-13 र 98674-95-513।
5: सुनत बाड़ा हो, है टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूँ जहूँ के मन नहीं करला।
6: है देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दांत सीधा बनाए के काम होला।
7: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा।
8: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी। दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
5: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559-74-74-00 और 9559-44-85-36।
8: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्रणाली परासी।
5: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, USG, ECG तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
8: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
7: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 98674-45-737। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम को जरूरी सूचना।
0: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूप में बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरुको हकमा यही चैत्र मसान्त सम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधन मा लाग्ने कुल जरिवाना को 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कूटी को लाइसेंस पनि वितरण गरिन्छ।
7: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।
9: ओहो, कता हो दाई, रन केर हिन्नु भएको छ नि?
7: हेर न भाइ, घर बनाउन लागेको सामान जहाँ गयो त्यही महँगो, म त दिक्क परे। यसो कबाडतिर सस्तोमा पाइन्छ कि भनेर हिँडेको।
9: ल कबाडमै कता, न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेस परासीमा जानुस् न, त्यहाँ त कबाड भन्दा पनि सस्तो र राम्रो सामान पाइन्छ।
10: हो, हामी कहाँ निर्माण सम्बन्धी छड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, एङ्गल पत्ती, पाइप, HR सिट तथा मूर्तिहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
11: एक पटक आएर त हेर्नुहोस्।
10: न्यू जय गणेश इन्टरप्राइजेस, रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड, नापी कार्यालयको ठिक अगाडि। सम्पर्क 9845059960 र 9818215059।
12: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
6: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हाट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा ऐन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
13: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरीद्वारा हाड जोर्नी तथा नशा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
14: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झाद्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
12: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक, रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी, संचालक शुभम यादव, फोन 0785906699 र मोबाइल 9857047282।
15: कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल, ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
16: ला, सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
15: ल ल, केही भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
16: हजुर, वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड, प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
17: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी, नवल परासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0775205510, मोबाइल 9857080510।
18: जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप लाइन जान्छ, एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
19: ठिकै भन्यौ, अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो, त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि, के को चिन्ता।
20: हजुर, जहाँ तपाईँले गिजर, हिटर, इन्भर्टर, आइरन, राइस कुकर, पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
19: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौ।
17: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर, रामग्राम 5 परासी थाना रोड, ग्लोबल कम्प्युटर को ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता, मोबाइल 9815564092 र 9828336460।

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले बिहानको 10 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: हेपिन क्या मेरो छोरालाई
1: गीता हातमा पाइन्छ
0: हो त नि बारिस के
2: हल्का ग्यास्ट्रिक
0: उज्जा मुर्दार
3: राम्रो मान्छे।

0: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला आ तनिको कहूँ जहूँ के मन नहीं करला।
1: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो। चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दाँत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
3: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरे 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
0: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठीबारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559974700 और 9559944536।
4: म सानै उमेरमा बेचिए, बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किए बाँचेर। तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरिरहेछु। न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ। यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र? खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
5: दिदी, म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे। झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति। जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु दिदी।
6: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु, अङ्ग झिक्नु अपराध हो।
7: मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्ष कैद, 5,00,000 जरिवाना हुन सक्छ। वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई 10 वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ। मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ।
6: मानव बेचबिखन अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ। बेचबिखन हुनबाट आफू पनि जोगियौ, अरूलाई पनि जोगाऊ।
8: पीडित तथा प्रभावितलाई माया र सम्मान गरौ।
9: हामी सबैको एउटै आवाज, मानव बेचबिखन मुक्त समाज।
8: जनहितका लागि आफन्त नेपाल, सौजन्य आवर डटर्स इन्टरनेशनल।
10: अरे वाह, देखा थी, बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
1: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
10: चला, इतना बढ़िया सोच तोहर रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
11: जी, हमन की यहाँ टाइल मार्बल ग्रेनाइट टोटी बाथरूम फिटिंग किचन डेकोरेशन मोटर पानी टैंकी शावर मिक्सर सीसा टेबल टॉप कम्बोर्ड सीट CPVC PVC पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
0: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठीबारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 9120425131।
12: कार्यक्रमका लागि साथीहरू त टाइममै आउनुहुन्छ होला। ल, ब्यानरहरू टाँगेर तयार पारौँ है।
13: ला, सबै काम गरियो, झन् ब्यानरै बनाउन भुलिएछ।
12: ल ल, केही भएन, राजु आर्ट्स परासीमा फोन गरौँ त, तुरन्तै तयार भइहाल्छ।
13: हजुर, वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएको यस राजु आर्ट्स परासीमा अत्याधुनिक DX5 फ्लेक्स मेसिनबाट डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड प्रिन्ट, स्तरीय फोटो प्रिन्ट, प्रमाण पत्र, भिजिटिङ कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट का साथै वाल पेन्ट, साइन बोर्ड पेन्टिङ तथा पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।
14: सम्पर्क राजु आर्ट्स परासी नवल परासी, प्रोप्राइटर राजकुमार रेशमी, फोन 0775205010, मोबाइल 9857080510।
15: ओ ओ माई गॉड, इत अभी वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगातार फिर पड़क गयी।
1: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
16: जी हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
17: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठूठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9918-51-09-81।
18: बा के भयो र, किन रुन्नु भएको?
19: कहाँ रोएको र बुहारी, आँखाबाट त्यसै आँसु बगिरहन्छ, घाममा हेर्नै सक्दिन, मासु पोलाछ भन्छन्, खै के भयो भयो?
20: मम्मी, मलाई पनि बुकेने बित्तिकै टाउको दुख्छ।
18: ए, भनेपछि दुवै जनालाई आँखाको समस्या भएछ। ल बा, हिँडिहाल्नुहोस् परासीको भगवती नेत्रालयमा आँखाको उपचार गर्न।
21: हजुर, परासीमा पहिलो पटक दृष्टि रोग विशेषज्ञद्वारा आँखा सेवा सञ्चालन।
18: हाम्रा सेवाहरू
21: मोतियाबिन्दु, आँखामा मासु पलाएको, आँसु नली बन्द भएको, आँखामा फुलो परेको, घाममा आँखा हेर्न नमिल्ने, टेढो आँखा भिजन थेरापी द्वारा सोझो बनाउने, अल्छी आँखाको उपचार, कम्प्युटर प्रविधि द्वारा आँखा जाँच गरी पावर, बिना पावर चस्मा तुरुन्तै तयार, सम्पूर्ण किसिमका कन्ट्याक्ट लेन्स, सबै उमेर समूहका लागि ब्रान्डेड चस्मा, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी लगायत विद्युतीय उपकरण प्रयोगकर्ताका लागि विशेष किसिमका

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: सितारों की मस्ती, संगीत के नशा,
2: पागल बनाए महीन,
3: आपके नचाए झुमाए वाला गीत।
4: बुलेट पहुँचीजा, बुलेट पहुँचीजा, ले चले घुमावे, बुलेट पहुँचीजा,
3: आपके दिल बहलाए वाला गीत।
5: जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है,
6: फरक दिन फरक प्रस्तुति।
1: जी हाँ संगनिए, भोजपुरी गीत संगीत के अनुपम उपहार।
7: सुने के न भुलाएल जे कार्यक्रम गीत बहार।

0: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सबके बीच में हमन के उपस्थित हो गए बाड़ी जा। आज हमन के
1: मंगल के दिन हो गए
0: जा, और देखा ले तो घड़ी में 11 बज गए बा। और प्राविधिक में हमन के साथ इतवाने सुरेश जी, और कार्यक्रम संचालक घर में हम अपसना खातून,
1: और हम शंभु चौधरी उपस्थित हो चुकल बानी जब मंगर के दिन में रह के एकदम विषय वस्तु आप सबके मालूम है नहीं है कि 8 गाना क्लिप बना के लेके आवाज जला हुए क्लिप में से रह के आपके कहो केना नाम के क्लिप गीत आपके मन पर आता आपके डायल करे पर 98210551581 मन जरूर आपके डायल के लिए रिसीव जरूर कर दी कदी कहने नहीं
0: एकदम आप सबके इंतजार में मन के बैठल बानी जब फोन डायल जरूर कर ले 98210551581 और हमसे बातचीत के साथ साथ अपन मनपसंद के गीत भी सुन सकल जाए।
1: उससे पहले आप अमन की लावल गेली क्लिप सुन ले, क्लिप सुनने के बाद 98210551581 जरूर डायल करल जाए।

0: मनके लावल क्लिप सुनले गैल होखल जाई एकदम आशा और विश्वास बाटे फोन डायल जरूर करल जाई 9821551581 इहे कहत फोन लाइन में कोनो संगरी आ चुकल बाने।
1: हेलो नमस्ते। नमस्ते नमस्कार, दंगिया से महेंद्र चौधरी जी की आवाज। महेंद्र जी की हालचाल कहा बाटे? एकदम मस्त चकाचक हो नहीं? सब ठीक बाटे। कल यहाँ मेला जरूर गए लोकल जाए। कहाँ कहाँ मेला गए? भड़ेरी गए जा कि बाबा बर्दगोरिया? भड़ेरी गए नहीं, भली बल देखे था नहीं के आज भी एकदम भली बल एकदम चलत हो ही नहीं एकदम कितना निक बाटे। खान पीन तो हो गए बाटे, कार्यक्रम सुन के साथ देते बाड़ी जा नहीं आज लेवल गए क्लिप सुन लीजा।
0: कितना नंबर के क्लिप्स बजा दिया जाए आपके सहभागिता में?
1: दो नंबर के चुनिले लहराए गीत गाए पवन गणेश चौधरी और समीक्षा चौधरी जी के आवाज बा। ये गीत मार्फत अपन साथी संगरिया लोगन के समझे सकल जाए।
2: सबसे पहले आप दोनों जन के सर और बानो सुरेश सर और बानो जानकर नाथ प्रकाश चौधरी जनार्दन चौधरी योग कबियार जी और बानो चुनल जी पार्वती जी ये गुड्डू पानिया और बानो सरावल से ओम कुमारी चौधरी हर्षमान चौधरी चंदर चौधरी कन्हैया यादव केवल चौधरी नील कुमार चौधरी धर्मेंद्र पासवान चंद्रदेवी मीना कुमारी कंवर जितना सुनकर स्वागत करना सबसे सर
0: एकदम आए वाले दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई। चलो जा नमस्ते।

0: सुरेंद्र चौधरी जी के आवाज में एक गीत सुन लीन जा। आप भी फोन डायल कर सकल जाए 98251581। यह कहत फोन लाइन में कोनो संगरी आ चुकल बानी। हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्कार। जानल पहचानल आवाज
1: बेला टाली से चिनक जी।
0: बेला टाली से चिनक जी, हाल खबर कैसन बा अपने के चिनक जी?
1: एकदम ठीक है, ठीक है, बढ़िया बा। अपन सुनाओ ना।
2: एकदम हम हन के भी एकदम बढ़िया ने बारे ने। चिनक जी, का हो ज्यादा बाटे इस समय?
1: बस व्यापार हो रहल बा, ओकर बाद रेडियो प्रासी सुन के साथ दे रहल बानी।
2: व्यापार हो रहल बा, रेडियो प्रासी सुन के साथ दे बाणी जा। के ननी आपके दिल से धन्यवाद रे। कहां बाणी जा इस समय? बेला टारी बाणी जा की कहूं बाजारी जारी और?
1: चार नंबर।
2: तु तहु जाने राधा, जरूर आपके राधा आपके इंतजार कर रहा था। गीत मार्फत साथी संगर के लगन के समझे सकल जाए।
1: सबसे पहले आप दोनों जन समझा फर्स्ट मान दुनिया से महेंद्र चौधरी जी, इनका तिरोहित माना डॉक्टर राजीव प्रकाश चौधरी, गोबरिया से मुन्ना ठाकुर, ओम कुमारी चौधरी, और बंदिया से ओम नारायण चौधरी, गुड्डू हरिजन गोपी जी से गुड्डू बनिया, और बारह परसा माना विनोद पंजार जी, शमसुद्दीन अंसारी जी, नरेश कुशवाहा जी, बलिराम प्रसाद दास जी, और जितना दोस्त मित्र कार्यक्रम सुन तरंग सौ के विशेष करके हरकट्टर जनार्दन चौधरी जी बानी, और हम तो चीरा करके चीने जाना सब दोस्त लगे।
0: आए वाले दिन में आपसे जरूर बातचीत हो। चला जा, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: बेलाडारी से चिनक हरिजन जी के सहभागिता में एक ठो गीत सुन लीन जा तो ही तहु जाने राजा फोन डायल कर सकल है और अपन मन पसंद के गीत सुने खातिर आपके नंबर खुला कल गए 98251581 एक और फोन लाइन में कोनो संगरी आजकल बने। हेलो नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।
2: नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। बलराम प्रसाद दास जी की आवाज परसा वीरगंज से नहीं
1: चिन्ह खाते दिल से धन्यवाद भाई। हम बोल रहा हूँ प्रसाद दास, नेपाल हिंद रेडियो श्रोता संघ सवैया परसा से बोल रहा हूँ। बड़ी
2: सवैया परसा से कितना लम्हा एड्रेस बाटे नहीं चल जाए। खान पीन हो गया आपके
1: एकदम हो चुका अपने कार्यक्रम के प्रतीक्षा रह अपने से बात भी हो रहा एकदम आशा खुशी लग रहा
0: एकदम आपसे एकदम दिल से धन्यवाद रही फोन के साथ दे लीजा। आज कितना नंबर के गीत सुनल दे बलराम जी
1: अभी तक कितना नंबर चल गई बैठी
0: कितना नंबर 1 3 5 6 7 8 बचल बाटे कितना नंबर के गीत सुनल जाए तीन नंबर के छ नंबर के गीत होके थोड़ा सा प्यार हुआ है। फिल्म है मैंने दिल तुझको दिया सिंगर उदित नारायण होने ई गीत मार्फत अपन साथी संगरी लोगन के समझ सकल जाए
3: विशेष करके अपने के सामने काम याद करे के काम और रेडियो पर आशीष से समस्त मित्र परिवार को ले जाता हम के शास्त्र के आदरणीय मित्र बारे वरिष्ठ उपाध सुरेंद्र चौधरी सर को ले जाता एक श्रोता का विनोद पंजार ब्रीज चौधरी शिवलाल चौधरी संतोष पासवान चंदन चौधरी संप्रीन अंसारी हिमांचल चौधरी केदार चौधरी उसकी हम नॉल पराजित की समर्थीय लोग बड़े आदरणीय बड़े नील कुमार चौधरी सीता चौधरी प्रकाश चौधरी गुडू बनिया चिनक जी पार्वती जी गुंजा यानी कि गुंजेश्वरी मुखिया जी शेरबहादुर चौधरी छगनी चौधरी डॉक्टर राय ओम कुमारी चौधरी उषण की महेंद्र चौधरी और रेडियो फरासी जितना श्रोतागण सुन रहा बा तमाम श्रोतागण के सुना दो
2: एकदम आए वाला दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई छूटा जाए। नमस्ते
1: नमस्ते नमस्कार।

0: छता दौडिए पनि त्यस्तै। यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्यो। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
1: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
2: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
0: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
2: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी, सुनोवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 0785208181।
0: साथै हाम्रो शाखा सुनोवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 0785905088।
3: परासी क्षेत्र में पहिला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा सम्पन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी।
4: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देता ईसा साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भर्ना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
3: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
1: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 9861745737।
5: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने
2: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
5: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
0: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना, नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
2: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट, रामराम 11 जमुआर, भुलास अटोक्राफको ठिक अगाडि। मोबाइल 9857046130 र 9804400067।
6: आउनुहोस्, अब यस क्षेत्रकै हरेक किसिमका बिरामीहरूको उपचारका लागि जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक परासीमा।
7: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश ढकाल प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। छाती, मुटु, सुगर, थाइरोइड तथा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन अग्रहरी प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म।
8: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश घिमिरे प्रत्येक शनिबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
9: लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर जमिल मिकरानी प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म।
10: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण श्रीवास्तव प्रत्येक दिन 3 बजेपछि।
9: र भैरहवा मेडिकल कलेजका नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर विश्व तुलाचन प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म।
2: साथै सम्पूर्ण प्याथोलोजी सेवा, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे, हाथ खुट्टा भाँचिएको, प्लास्टर तथा नर्मल अपरेशन र वैदेशिक रोजगारका लागि मेडिकल जाँच पनि गरिन्छ।
6: सम्पर्क जय सवाल साई स्वास्थ्य पोलिक्लिनिक, रामग्राम 5 परासी। फोन 0785207046 र मोबाइल 9847041106।
11: कारे पुर भैया, आज कपड़ों बड़ा साफ और चमकदार लगता, कौने सरफ से फिचले हरे?
12: काहे तोके नाई मालूम बका, आजकल ते गांव से लेके शहर बाजार तक सब केहू गाय छाप सरफे लगावता, जेकर खरीद में साइकिल इनाम मिलता, साथ ही कपड़ा के दाग और धब्बा हटाए के बाते एक्स्ट्रा टाइट हर्बल वाश प्रयोग कर जा, जेहमे iPhone 13 उपहार के भी व्यवस्था बा।
1: जी हाँ, आप सब भी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग कर जाओ और नेपाली होली कह के पहचान दिखावल जाए।
13: उत्पादक साफी सरफ उद्योग, माया देवी गाँव पालिका 1, पाकड़ी, कपिल वस्तु। संपर्क नंबर 9264 48 200।
14: ल बिहेको अरू तयारी त भयो, अब घर गहना
15: हो नि, अब गहना जस्तो कुरा जहाँ पायो त्यहीबाट किन्नु भएन है
16: बाबा। बाबा गहना त ढकाल ज्वेलर्स भूमिबाटै बनाउनु पर्छ है, अस्ति श्याम दाईको बिहेमा नि त्यहीबाट बनाएको, कस्तो राम्रो डिजाइनका गहना थिए नि।
0: विवाह होस् या चाड पर्व, दक्षे कालीगढद्वारा नयाँ डिजाइनका आकर्षक बिना रसायनका शुद्ध सुनचाँदीका गरगहनाका लागि ढकाल ज्वेलर्सलाई नै सम्झनुहोस्, साथै हामी कहाँ गरगहना साटफेर पनि गरिन्छ।
16: सुनचाँदीका गरगहनाका लागि विश्वासिलो ठाउँ ढकाल ज्वेलर्स, सुनवल 12 भुमही, प्रोप्राइटर कृष्ण ढकाल, सम्पर्क 98677 80632, 98075792111 र 98495171979।
17: अरे जान ले बुका हसके गोरी, जान ले बुका
18: रउआ सब सुन रहल वानी रेडियो पारासी 90.2 मेगाहर्ट्ज।

0: छोट मिट व्यवसाय विश्राम के बाद फिर से लौट के आगल बढ़िंदा आप सबके बीच में फोन डायल कर सकल जाए 98-210-5581 यह खत फोन लाइन में कोनो संगरी आ चुकल बने।
1: हेलो नमस्ते।
2: नमस्कार जयराम जी के।
0: नमस्ते नमस्कार डॉक्टर राज जी के आवाज तिलौली से आ गई की मनारी से आ गई?
2: नहीं नहीं तिलौली से।
1: आज तिलौली बाड़ी जा कहूं काम धाम के अभी ना जो छुट्टियां बाकी का। बिहान से काम धाम होई नहीं कल मेला गई जाए तो थोड़े से रेस्ट करे पड़ल नहीं। रेस्ट करे पड़ल चल जा घाम बाटे एकदम घरे रह जा पानी उनी पियल जा नहीं।
0: खान पीन हो गए डॉक्टर राय जी के?
2: यार खान पीन हो गई बा।
0: क्या कह के बैठल बाड़ी जा?
1: कार्यक्रम सुन के साथ दे तबाड़ी जा क्लिप सुनी जा नहीं डॉक्टर राय जी? तीन नंबर के गीत हो गए एकदम बिंदिया चमके चूड़ी खन के लंग मारे रसकारे हम हो गईली तोहार ऐसे नहीं गीत थोड़े से भोजपुरी ट्रांसलेट चल जाए गीत मार पता अपन साथ ही संगरिया लोग इन्हें समझ सकल जाए।
2: हमारा हम इनके सिकंदर प्रसाद चौधरी जी लंका हवा से जमानदत प्रसाद चौधरी जा रहे हैं हरकटवा से महेंद्र चौधरी जा रहे हैं दलिया से तीनों से प्रकाश चौधरी हरौली से पेपराज चौधरी अबेला टाजवर तीनों जी पार्वती जी हम इनके बुद्धी दलिया जी जा रहे हैं गोपीगंज से जासुबा से बार गोलू हरजन जी ओम लाल चौधरी जा रहे हैं से हम इनका अध्यक्ष जी जा रहे हैं नील कुमार चौधरी हसमान चौधरी कन्हैया यादव जी आपके रूपंदे हित बारह धर्मेंद्र पासवान महेंद्र राय सीरियल से बारह संग्राम दास जी बारह हम इनके शिवलाल चौधरी शिव नारायण चौधरी बारह हम इनके बिहार जी जितना सुन के साथ दे तो ये नौलपरासी के वीरगंज के
0: जरूर बातचीत हुई। नमस्ते।

0: कथम हो गए तुम्हारे मन के। डॉक्टर अजय तिलौली से सहभागिता जनेले रहे नहीं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म के गीत सुनिन जन आवाज रहा अलका याग्निक और कुमार सानू जी के आवाज में गीत सुनिन जमन के डॉक्टर राय जन तिलौली संग सहभागिता जनेले रानी ये क्रम में फोन लाइन में कोनो संगरिया सुगल बने।
1: हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
1: नमस्ते गुड मॉर्निंग। विनोद पंजीयर जी की आवाज
2: एकदम
0: अच्छा रहे के चाहिए विनोद जी। अच्छा रहे तो कैसे एकदम गड़बड़ा जी नहीं थे। चल जाए आपके सहभागिता में कितने नंबर के गीत सुनी मिली थारू गीत पांच नंबर के गीत हो गए खेम चौधरी और समीर चौधरी जी के आवाज बाटे। गीत मारे पता साथी संघर्ष लोगन के समझे सकल जाये।
2: ओम कुमारी चौधरी और मुन्ना ठाकुर कृष्णा विज्ञान जितना सब कुछ नाम
1: था। आए वाले दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई। चलो जा नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार।

0: परदेशिया भाग दुई के गीत सुनिन्छ नै थारु गीत रहल समीक्षा चौधरी और खेम चौधरी जी की आवाज में हमने सहभागिता जनैले रहने विनोद पंजियर जी वीरगंज से सहभागिता जनैले रहने उनके सहभागिता में ये गीत सुनिन्छ एक अर में फोन लाइन में कोनो संग्रह छु गलवानी हेलो नमस्ते
1: संतोष ठाकुर जी की आवाज एकदम आपके भी धन्यवाद बाटे कार्यक्रम में फोन के साथ दिया लिंजा हाल चाल कैसन बापने के अब ऐसे है कार्यक्रम में फोन डायल सबके करेला
0: एकदम कितना मोह माया बाटे आप सब के एकदम श्रोता संगरी लोगन के एकदम दिल से धन्यवाद रहने एक तो एक एकदम फोन एकदम एक के साथ सब जना फोन करहिं तो थोड़े से बिजी बताए लगेला नहीं फोन एकदम खान पीन हो गया आपके हो गया बाटे हम मान के भी हो चुके बाटे कार्यक्रम में रहिए कितना नंबर के गीत सुनल जाए भोजपुरी एल्बम के दू ठो हमन लगे बाकी बा एक भोजपुरी फिल्म के गीत बाकी बा फिल्म वाला पयालिया छम छम बादे फिल्म के नाम हो के मोहब्बत और सिंगर खुशबू जैन के एकदम ये गीत मार पता मन साथी संगर ये लोगन के समझ सके जाए
2: पहले नंबर तक फरासी पूरा यूनिट के और साला जिन्ना दाजी बहन दीदी बहन लो सुना था लोन उन लोन से अभी से के मुन्ना ठाकुर जी के
1: एकदम आए वाला दिन में आपसे जरूर बातचीत हुई चलो जा नमस्ते
2: नमस्ते खुदा हाफिज़

0: सुनत बाड़ा हो कि ये जन काहे आजकल हमके साफ से नाय लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का?
1: हतेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता आ तनिको साफ से नाय फरियाता।
2: है देखा तू सब के ही कुल समस्या बाते, एक बेर विगत लम्बा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
3: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेकू मशीन से मोतियाबिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँस के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
4: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल आँखा अस्पताल परासी। फोन 0785-20146 और 0785-21033।
5: अब तपाईको टोयलेट जाम भयो वा भरियो भनेर तपाई भौतारिनु पर्दैन। मात्र एक कल फोन राम बच्चन सेनेटरी लाई गर्नु भयो भने हामी तुरन्त आइहाल्छौ।
6: हाम्रा सेवाहरू
7: अत्याधुनिक भ्याकुम क्लीनर मेसिन द्वारा गन्ध रहित तरिकाले सेफ्टी ट्याङ्की सफा गरिने,
6: विद्युत नभएमा पनि जेनेरेटरबाट काम गरिने।
7: थप जानकारीका लागि सम्पर्क राम बच्चन सेनेटरी रामग्राम एक परासी।
8: सम्पर्क मोबाइल 98069-70-72, 98000-70-75-13 र 98674-95-513।
9: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
10: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी चिनवे छावे के, लेकिन
9: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
2: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कईल जाला।
11: संपर्क खातिर
2: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 98473-68733 और 98194-60630।
12: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्धचोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
13: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार, हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो, चौथो र पाँचौ शनिबार, ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलील मियाँ हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार, छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार,
14: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म, मेडिकल अफिसर डाक्टर मनिष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म, मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म, जनरल सर्जन डाक्टर किरण पाण्डे हरेक दिन बिहान 7 देखि राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरी द्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
15: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनिष कुमार झा द्वारा भिडियो एक्सरे, ओपिडी सेवा, सुजर प्लास्टर, फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
12: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक, रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी। संचालक शुभम यादव, फोन 0785906699 र मोबाइल 98570-47282।
3: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना।
2: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ।
3: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।
11: नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।

0: दिन बेर व्यवसायिक विश्राम के बाद फिर से लौट के आगल बढ़ी आप सबके बीच में फोन डायल जरूर कर 98 2 10 51 581 ये कहा फोन लाइन में कौन संगे आ चुकल बने।
1: हेलो नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते नमस्कार
1: नमस्ते नमस्कार शमसुद्दीन अंसारी जी की आवाज।
0: अस्सलाम वालेकुम शमसुद्दीन जी।
2: वालेकुम सलाम। अपनों को सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम। और आपने क्या हाल खबर कैसन बा?
2: बहुत बढ़िया। अपन बता दी
0: हमन की भी एकदम बढ़िया बा। खान पीन हो गया आपके?
2: खान पीन हो गया बा। आप सला जी हम काम में भी जाने
1: काम में बारे में काम धमाधम हो रहा बाटे नहीं।
2: हाँ तो हम पेंटिंग के काम होला घर पे
1: के कार्यक्रम सुनत हो गल जनी ऑनलाइन मार्फत। चल जा हाल चाल बढ़िया चकाचक बाटे काम धाम एकदम बढ़िया से चलत बाटे नी। कितने नंबर के गीत सुनल हमें लगे दुए ठो बाकी बा एक नंबर और लास्ट आठ नंबर। आठ नंबर नस नस चढ़े लगल प्यार वाला नशा एलबम के गीत होके आए वाला दिन में जरूर बातचीत हो पहले से अपन साथी संगे लोग समझ सकल जी।
0: नमस्ते
1: नमस्कार।

0: पर्सा बिरगंज से शमसुद्दीन अंसारी जी के सहभागिता में भोजपुरी गीत सुनिल जा। फोन डायल जरूर करल जाए 98251581। यह कथ फोन लाइन में कोनो संगरी आ चुकल बने।
1: हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते नमस्कार। जानल पहचानल आवाज, आपके शुभ नाम?
2: रामापुर से ओमनाथ कंवर।
1: ओमनाथ कंवर जी के हाल चाल का बाटे? रामापुर के एकदम बढ़िया नहीं है? मेला लागल रहल के नहीं, हम वीडियो वीडियो देखले रहली नहीं ओमनाथ जी। एकदम चल जाए एकदम।
0: खान पीन हो गया आपके ओमनाथ जी के?
2: हाँ हो गया, आप दोनों जन के
0: हमन के भी एकदम हो चुकल बाटे। आज कितना है? एक नंबर के गीत बचल बाटे हुए लास्ट और लकी कलर के रूप में आयल बड़ी जा। वो गीत मार्फत अपन साथी संग्रह लोगन के समझ सकल जाए।
2: सबसे पहले आप दोनों समझिए और नवरात्रि वाले किस्मत चौधरी, रोहन गुरु, भर, अनन्या सहानी, हरिजन, सुनील रजन और जितना कनर रेडियो पर आशीष सिंह के बैठल वाहन सबके
0: एक माया वाले दिन में आपसे जरूर बातचीत है। चलो जा, नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: रामनाथ कंवर जी के सहभागिता में एक भोजपुरी गीत सुनलिन जब बर्बादी हुई
1: एल्बम के गीत रहल नहीं शिल्पी राज के आवाज में गीत सुनलिन जब हमन लगे लावा गए क्लिप एकदम ओरा चुकल बने ऑप्शन जी
0: एकदम फोन डल ले करल जाई अब एकदम टाटा बाय बाय करे वाला समय आ गेल बाटे काम व्यस्तता के बावजूद भी फोन कह के साथ दिलन जा ओकर खातिर ढेर से धन्यवाद रही और विशेष कह के जे जे फोन कह के कार्यक्रम में साथ दिया उ सबके धन्यवाद दिया हम अपसना खातून
1: और प्रादीप संगरिया जी के धन्यवाद।

0: सुनत बाड़ा हो, है टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला आ तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
1: है देखा अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दाँत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़ियन दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
3: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दाँत बनवाए के बाद 1200, दाँत सफाई करे खातिर 160, दाँत लगवाए के 100, दाँत निकाले के 160, दाँत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दाँत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
0: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559745836।
4: तहके मालूम बा मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
5: सही कहलाओ, सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
2: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सरफ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
4: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
5: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
6: मसाने उमेर में बेची बाध्यतावश यौन कर्मी बने, बल्ल देश फर्किए बाचे, तर अहिले प्रत्येक दिन र क्षण मरी रहेछु। न घर परिवारले न समाजले मलाई स्वीकार्छ, यही आश्रय मेरो जीवन हो। सबैबाट म र मबाट सबै टाढा त भए, त्यति मात्र कहाँ हो र? खुसी र हाँसो पनि मबाट सदाका लागि टाढा भए।
7: दिदी, म पनि 12 वर्षमा बेचिएँ, आफन्तले नै फकाएर लगे। झन्डै 10 वर्ष बिताएँ, रोग लाग्यो, निकालिएँ। अब हजुरकै जस्तो न जाने ठाउँ, न इष्टमित्र, न साथी सङ्गति। जिउँदैछु तर प्रत्येक क्षण मरे जत्तिकै छु। दिदी,
8: तपाईँ तथा तपाईँका सन्ततिलाई नजिकका आफन्तले विभिन्न बहानामा बेच्न सक्छन्। कुनै पनि बहानामा झुक्याएर विदेश लानु वा वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, कर कापमा पार्नु, अङ्ग झिक्नु अपराध हो।
9: मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्ष कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ। वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई 10 वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ। मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ।
8: मानव बेचबिखन अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याऊ। बेचबिखन हुनबाट आफू पनि जोगियौ, अरूलाई पनि जोगाऊ।
10: पीडित तथा प्रभावितलाई माया र सम्मान गरौ।
11: हामी सबैको एउटै आवाज, मानव बेचबिखन मुक्त समाज।
10: जनहितका लागि आफन्त नेपाल, सौजन्य, our daughters international।

0: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता सत साहेब हॉस्पिटल परासी में स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया बाल रोग तथा शिशु सेवा लैब एक्सरे वीडियो एक्सरे यूएससी ईसीजी तथा इको सेवा अल्ट्रासाउंड इंडोस्कोपी नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
0: इतने भर नहीं सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
2: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली रामग्राम 5 परासी घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड मोबाइल नंबर 9861745737।
3: सविता स्वास्थ्य क्लिनिक बुद्ध चोक परासीमा हरेक किसिमका बिरामीहरूका लागि वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा चेक जाँच गरिने हुँदा सम्बन्धित बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
4: एएसएसएन र स्पाइनल हेल्थ इन्टरनेसनल संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर सन्दीप कुमार यादव हरेक बुधबार स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुणा पोखरेल हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शुक्रबार हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विवेक केसी हरेक महिनाको तेस्रो चौथो र पाँचौँ शनिबार ग्यास्ट्रिक तथा पेट रोग विशेषज्ञ डाक्टर खलिल मिया हरेक महिनाको दोस्रो तथा चौथो शनिबार छाला तथा एन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सपना कर्ण हरेक शनिबार
5: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर असीम रेग्मी हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार बिहान 11 दिउँसो 2 बजेसम्म मेडिकल अफिसर डाक्टर मनीष कुमार झा हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान 8 दिउँसो 3 बजेसम्म नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र कसौदन हरेक शनिबार दिउँसो 12 4 बजेसम्म जनरल सर्जन डाक्टर किरण हरेक दिन बिहान 7 राति 8 बजेसम्म र डाक्टर सुनिल कुमार चौधरी द्वारा हाड जोर्नी तथा नसा रोग सम्बन्धी चेक जाँच गरिन्छ।
6: साथै हरेक दिन जनरल फिजिसियन डाक्टर मनीष कुमार झा द्वारा भिडियो एक्सरे ओपीडी सेवा सुजर प्लास्टर फार्मेसी तथा इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ।
3: समिता मेडिकल हल एवं सविता स्वास्थ्य क्लिनिक रामग्राम 5 बुद्ध चोक परासी संचालक शुभम यादव फोन 0785906799 र मोबाइल 9857047282।
0: गोवर्धन चाचा घरवा कब बनी हो?
7: ए बाबू हमन के गरीब आदमी लोहा लकड़ इतना महंगा बा सोचले रहनी किनवे छावे के लेकिन
0: का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला एक बार जाके तो देखी।
8: जी हाँ पाइप एंगल करकट पाता टीन छड़ प्लेट ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कई जाला।
9: संपर्क खातिर
8: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल रामग्राम 5 बाईपास रोड बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने प्रोप्राइटर चंदू चौहान मोबाइल 9843768733 और 9814960630।
10: जो कोई को इच्छा सुंदर घर को लागी सुंदर रंग
11: तपाई को घर लाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इंडिगो पेंट्स।
10: इंडिगो पेंट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कंसर्न कलर हाउस एंड सिद्धार्थ प्लम्बिंग रामग्राम 3 परासी।
11: इंडिगो को मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेंटी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेंटी सहित अटोमेटिक मेसिन बाट कलर तयार गरिनुका साथै रंग रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
10: इंडिगो पेंट्स सदा बसन्तम।
12: घरलाई कस्तो रंग सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
13: त्यति मात्रै कहाँ हो र हामी कहाँ पाइप फिटिङ प्लम्बिङका सबै सामान सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
11: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
13: परासीमा घर रंग रोगन प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने एकमात्र स्थान
9: सत्य भगवती ट्रेनिंग कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी पुरानो फिल्म हलको अगाडि।
12: प्रोप्राइटर चन्द्रमणि चौधरी, सम्पर्क 0 78 5 20 7 47 र 98 5 70 46 7 47।
14: पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। सञ्चालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98 5 70 23 01 31।
15: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ पश्चिम नवलपरासीको पहिलो रेडियो, सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज।

0: के तपाईँ अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सेवाका लागि हाजिर छ मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी।
1: काठमाडौँको पुतली सडकमा विगत 20 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अब परासीमा खुलेकोले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
0: स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरियाका साथै युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको सपनालाई हामी पूरा गर्दैछौ। साथै कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 50% छुटमा आइएलटिएस, पीटी र जापानिज भाषाका कक्षा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस अध्ययन गर्न तथा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कोर्सहरूमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने पनि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनु।
1: थप जानकारीका लागि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी रामग्राम 5 परासी अदालतको ठिक अगाडि, शाखा प्रबन्धक श्याम कुमार बस्याल, सम्पर्क 98510 38135।
2: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
3: ए बाबु, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी किनवे छावे के, लेकिन
2: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथ पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेगा। एक बार जाके तो देखी।
1: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कैल जाला।
4: संपर्क खातिर
1: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान, मोबाइल 98437 68733 और 98194 60630।
5: ओ माय गॉड, इते अभी वह दिनवा बदलल का टायरवा है, लगातार फिर पड़ गई।
6: ए भैया, चाहे जहाँ से लगेबा ते ऐसे है, अगर मजबूत या ब्रांडेड सामान चाहिए सीधे साहिल टायर हाउस ठूठी बारी चल जा।
7: जी, हमन की यहाँ 2-3 साल के वारंटी के साथ ब्रांडेड कंपनी मिसलिन, MRF, सीएट, मैक्सिस, टीवीएस, रालको, डनलप, जेके, गुड ईयर लगाए के टायर, ट्यूब, रिम, स्टील वार्ड, पंचर के सामान सुपथ मूल्य में मिलला।
8: थोक एवं फुटकर सामान के आधिकारिक विक्रेता साहिल टायर हाउस, मेन रोड ठुठीवारी, प्रोप्राइटर सतीश कुमार गुप्त, व्हाट्सएप नंबर 9918-51-09-81।
9: नवल परासी उद्योग वाणिज्य संघको अनुरोध। आदरणीय उद्योगी व्यापारी व्यवसायी महानुभावहरू, आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायको वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणको क्रममा ग्राहकहरूले क्युआर माध्यमबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी अनिवार्य रूपमा लिनुहुन जानकारी गराउँदछौँ। साथै क्युआर रकम कारोबार आफ्नो फर्मको ब्याङ्क खाताबाट गर्नुहुन समेत जानकारी गराउँदछौँ। महासचिव भोला पराजुली, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ।
10: हरे कृष्ण जप्दै कता हिँड्नुभयो बुवा?
11: ए बाबु, नातिको दाँत दुखेर हरे कृष्ण डेन्टलतिर हिँडेको। मैले यही दाँतको समस्याले कति दुःख पाएँ, अब हरे कृष्णमा जाने बित्तिकै ट्वाक्कै ठिक भयो, त्यही भएर नातिलाई पनि लिएर हिँडेको।
0: हो, अब सबैले भन्छन् हरे कृष्ण। हामी कहाँ अत्याधुनिक मेसिनद्वारा दाँतको चेक जाँच गरी बाङ्गोटिङ्गो दाँतलाई सिधा बनाउने, आरसिटी, डेन्टल इम्प्लान्ट, दाँतमा सिमेन्ट भर्ने, दाँतको सफाई लगायत दाँत सम्बन्धी हरेक किसिमका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
12: पुनश्च डाक्टर विकास ढुङ्गाना र सन्जु बस्याल सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दाँत, मुख तथा गिजाको उपचारमा 25% छुटको व्यवस्था छ।
1: थप जानकारीका लागि हरेकृष्ण डेन्टल प्राली, रामग्राम 3 परासी बुद्ध चोक, एभरग्रिन हस्पिटल परिसरमा, निर्देशक श्याम कुमार बस्याल, 98510 38135।

0: सक्छन्।
1: एभरेस्ट कलरको खरिदमा बम्पर उपहार जित्ने सुनौलो अवसर, रु 25,000 बराबरको एभरेस्ट कलर खरिद गर्नुहोस् र एक वा दुई होइन तिन तिन जना लखपति बन्ने मौका नछुटाउनुहोस्। यो विशेष अवसर भदौ 1 गतेदेखि मनसिर 21 गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुनेछ। साथमा छन् अन्य थुप्रै आकर्षक उपहारहरू, 5 जनालाई स्यामसङ फ्रिज, 10 जनालाई स्मार्ट वाच, 25 जनालाई इन्डक्सन चुलो र 50 जनालाई एभरेस्ट गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि एभरेस्ट कलर लिमिटेड, कौशल टार 3, भक्तपुर, वेबसाइट www.everestcolor.com।
2: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
3: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
4: सही काला हो, सफेद सरफ कपड़ा के मुलायम बनावले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
5: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सरफ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
3: सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सरफ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
4: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
6: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़-मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला, आ तनिको कहूं जहुक मन नहीं करला।
7: हाय देखा, अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में, जहां विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दाँत सीधा बनाए के काम होला।
5: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के RCT के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा।
8: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1,000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दांत बनवाए के बाद 1,200, दांत सफाई करे खातिर 160, दांत लगवाए के 100, दांत निकाले के 160, दांत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दांत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे, सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
6: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559074740 और 9559044586।
9: या जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप लाइन जान्छ, एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
10: ठिकै भन्यौ, अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो, त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि, केको चिन्ता।
11: हजुर, जहाँ तपाईँले गिजर, हिटर, इन्भर्टर, आइरन, राइस कुकर, पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
10: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौँ।
12: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर, रामगराम 5, परासी थाना रोड, ग्लोबल कम्प्युटर को ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता। मोबाइल 9815164092 र 9828336460।
5: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना।
1: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ।
5: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।

0: जहिले खाना खाने बेलामै झ्याप पलाइन जान्छ। एउटा इन्भर्टर त राख्नै पर्छ बुढा।
1: ठिकै भन्यौ, अनि रुममा कुलर पनि त चाहियो। त्यसको लागि सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पसल छँदैछ नि, के को चिन्ता?
2: हजुर, जहाँ तपाईँले गिजर, हिटर, इन्भर्टर, आइरन, राइस कुकर, पंखा लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान पाउनुका साथै हाउस वेयरिङ र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा मर्मत पनि गरिन्छ।
1: पुनश्च हामी होम सर्भिस पनि भनेकै समयमा तुरुन्त गरिदिन्छौ।
3: सिर्जना इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेन्टर, रामगराम 5 परासी थाना रोड, ग्लोबल कम्प्युटर को ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर केदारनाथ गुप्ता। मोबाइल 9815640092 र 9828336460।
4: बस, ट्रक, कार होस् वा मोटर बाइक, टायर सधैँ सिएटकै।
5: हजुर, जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स भूमहीमा बलियो, टिकाउ अनि बढी माइलेज भएको सिएट टायर, इन्भर्टर, ब्याट्रीहरू साथै आकर्षक सटिङ सुटिङका लागि पनि एकै ठाउँ।
4: जय कालिका ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स, सुनवल 12 भूमहीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क मोबाइल 9857045155।
6: यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको जरुरी सूचना।
7: सवारी साधन दर्ता भई वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर नबुझाएको र नवीकरण गराउन छुटेकाहरूको हकमा यही चैत्र मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधनमा लाग्ने कुल जरिवानाको 50% छुट दिइनेछ। साथै सवारी चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा कार, जीप, ट्रेक्टर, ई रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटीको लाइसेन्स पनि वितरण गरिन्छ।
6: अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम।
1: मैया, ए मैया।
8: हजुर, के भो?
1: छ नि, अब दाँत, मुख र गिजाको उपचारका लागि बुटोल भैरवा जानै नपर्ने भो। परासीमै पहिलो पटक सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर खुलेको रहेछ नि।
9: हाम्रा सेवाहरू दैनिक रूपमा डेन्टल सर्जनद्वारा दन्त परीक्षण, दाँतको एक्सरे, दाँत सफा गर्ने, टल्काउने, किरा लागेको दाँत भरिने, दुखेको दाँतको जरेदेखि आरसीटी उपचार, भर्न नमिल्ने दाँतलाई निकाल्ने,
8: साथै मुखमा भएको घाउ खटिराको उपचार, मुख सानो खुल्ने समस्याको उपचार, कृत्रिम दाँत राखिने र बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने।
10: काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा अध्ययन गर्नुभएका बिडिएस डेन्टल सर्जन डाक्टर निसार खान प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ। समयमा दाँतको चेक गराई मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
3: सम्पर्क सिटी डेन्टल तथा ओरल मेक्जिलो फेसियल सेन्टर, रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड, स्वास्थ्य कार्यालयको अगाडि। मोबाइल 9803131351।
11: जता दौडिए पनि त्यस्तै, यो घर बनाउने काम त दिक्क लाग्ने बन्या। एकै ठाउँ सामान पाइने पनि होइन, रेट पनि त्यस्तै महँगो।
6: लौ दाई पनि सुनिल हार्डवेयर परासी जानु भएन?
7: हजुर, सुनिल हार्डवेयरमा गएपछि घरको चिन्ता खतम।
9: हामी कहाँ छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रङरोगनका लागि एसियन तथा एभरेस्ट पेन्ट, इन्डोर ब्रान्डका बाथरूम फिटिङ, सेनेटरी, प्लम्बिङका सबै सामान सँगै इलेक्ट्रिक सामान पनि उपलब्ध छ। अब सबै सामान एकै ठाउँमा सुपथ मूल्यमा पाएपछि भएन त टेन्सन दूर।
7: सम्पर्क सुनिल हार्डवेयर प्राली, रामग्राम 3 परासी सुनवल रोड, पुरानो सिनेमा हलको अगाडि। फोन 0785208181।
9: साथै हाम्रो शाखा सुनवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 0785905088।
12: परासी क्षेत्रमा पहिला बेर निजी स्वामित्वमा सञ्चालित 1500 के सुविधा सम्पन्न हस्पिटल सत साहेब सिटी हस्पिटल प्राली परासी।
13: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता ईसा साहेब हॉस्पिटल परासी में। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भर्ना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
12: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
6: सम्पर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 98671 45 737।
14: सुनत बाड़ा हो, के जन काहे आजकल हमके साफ से नाय लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का?
15: हतेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता आ तनिको साफ से नाय फरियाता।
16: हई देखा, तू सब के ही कुल समस्या बाते, एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
6: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि, फेकू मशीन से मोतियाबिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँख के नली खोलले के साथे ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
17: समय में आँख जाँच करावल जा और आन्हर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल अस्पताल परासी। फोन 0785-20-146 और 0785-21-033।
18: हद तेरी का, लास्ट गर्मी लगता यार, लगता बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सका। यही में मोबाइलो फूट गई बा। लेकिन
6: लेकिन का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता।
13: जी हाँ, धीरज ट्रेडर्स परासी में हर एक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, हीटर लगा के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
15: संपर्क धीरज ट्रेडर्स, रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल, मोबाइल 98472-22020 और 98015-22020।
3: पेट्रोलियम पदार्थ को सहज आपूर्ति का लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डीजल लगायत का अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी, बाईपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।

0: सुधारको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम 5 परासी बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
1: डेंगु रोगबाट बस्नका लागि सर्वसाधारणमा अनुरोध। डेंगु रोगको महामारी धेरैजसो ठाउँमा प्रकोपको रूपमा फैलदै गएकोले यसको लक्षण देखिन साथ स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराइहालौ। लक्षणहरू: उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी वा मांसपेशीमा अत्याधिक दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, गिजा नाक मुखबाट रगत बग्नु, शरीर चिलाउने आदि।
2: डेंगु रोगबाट बस्ने उपायहरू: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्ने, पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुल भित्र सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने गरी जाली लगाउने, घर आँगन र वरपरको सफाई गर्ने, पानी जम्ने भाँडाहरू, टिन, खाली बट्टा, गमला, फुलदानी, टायर आदिमा पानी जम्न नदिने, गमलाको प्लेट, फुलदानी, कुलर आदिको पानी कम्तीमा हप्ताको 2 पटक फेर्ने, घर वरपर रहेका पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुर्ने र ढल, पोखरी लगायत धेरै पानी जमेको ठाउँमा जलेको मोबिल वा मट्टी तेल हाल्ने गर्नु पर्दछ। थप जानकारीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासी।
3: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वाशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
4: सही कहलाओ, सफेद सर्फ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
5: जी हाँ, चाहे वाशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सर्फ। जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गाँव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
3: पुनश्च सफेद वाशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सर्फ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
4: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली, कलकत्ता, भारत। संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।
6: हद तेरी का लास्ट गर्मी लगता यार, लगता बिना फ्रिज या कूलर के नहीं रह सकाई। यही में मोबाइलो फूट गई बा। लेकिन
5: लेकिन का धीरज ट्रेडर्स परासी में चला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हरेक ब्रांड के मोबाइल किस्ता बंदी में सुपर दाम में मिलाता।
7: जी हाँ, धीरज ट्रेडर्स परासी में हर एक ब्रांड के मोबाइल बिक्री तथा मरम्मत कैले के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान में LED TV, फ्रिज, कूलर, पंखा, AC, हीटर लगात के सब सामान सुपथ मूल्य में बिक्री होला।
8: संपर्क धीरज ट्रेडर्स, रामग्राम 5 परासी बुद्ध चौक, मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज खरेल, मोबाइल 98 470 22 020 और 98 015 22 020।
9: ए चाचा, देखा न, हमार आँखिया के नजरिया कमजोर हो गइल बा का हो? हमके तो एकदम धुधुराह लौकत है।
6: ए मर्दवा, अन्हरे मनई से आगेला पूछे, इहे हाल त हमरो बा। आँखिया से रही रही के आंसू गिरता, हम हुई एकदम से परेशान हो गइल बाड़ी।
10: अच्छा, तू सब इतने बाती खातिर इतना परेशान बाड़ा? अब ते हमन के इहे सुंदर नगरी परासी में पहला बेर दृष्टि रोग विशेषज्ञ द्वारा आँख सेवा संचालन में आयल बा।
11: जी हाँ, हमन के विशेषता मोतिया बिंदु, आँख में मांस उभरल, टेढ़-मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँख के नली खुलले के साथे दक्ष जनशक्ति से आँख के जांच कई के, कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा के साथे तमाम किस्म के कंटैक्ट लेंस भी तुरंत तैयार कइल जाला।
5: संपर्क भगवती नेत्रालय, रामग्राम 3 परासी सुनोल रोड, आँख अस्पताल के ठीक सामने। मोबाइल 98 672 28 015 और 98 572 22 015।
12: ए लौ न लौ लौ, चट्याङ पर्ने आटो सबैजना यता आऊ त, यता यो ठुलो रुखको फेदमा बसौ।
13: हुन्न हुन्न, चट्याङ पर्दा रुखको फेदमा बस्नु हुँदैन, त्यहाँ त झन् जोखिम हुन्छ।
14: हो र?
13: हो नि, चट्याङ पर्दा रुख मुनि र बिजुलीको खम्बा वा अग्लो ठाउँमा बस्नु हुँदैन, सुक्खा ठाउँ र घरभित्र झ्याल ढोका लगाएर बस्नुपर्छ।
14: अनि चट्याङबाट जोगिन अरू के गर्नुपर्छ?
13: चट्याङ पर्दा वा पर्ने सम्भावना हुँदा टेलिभिजन, फ्रिज, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन, माइक्रो ओभन जस्ता विद्युतीय सामग्रीमा जोडेको तारको स्विच बन्द गर्नुपर्छ। यदि विद्युत बन्द गरिएन भने चट्याङ पर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ।
14: चट्याङ पर्ने जोखिम कुन कुन समयमा बढी हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न।
13: धेरैजसो चट्याङ चैतदेखि जेठ महिनामा र सामान्यतया दिउँसो 3 बजेपछि बढी पर्ने सम्भावना हुनाले यो समयमा सचेत रहनुपर्छ।
15: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
16: सुनत बाड़ा हो, के जन काहे आजकल हमके साफ से नाय लौकत बा, लागत आँखिया कमजोर हो गइल बा का?
17: हतेरी का, हमरो समस्या ते इहे बा हो, रही रही के आँखिया राहे आँस गिरता, अदानी को साफ से नाय फरियाता।
18: भाई देखा, तू सब के ही कुल समस्या बाते, एक बेर विगत लंबा समय से नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवा दिहत आयल डॉक्टर विनोद नीता कंदेल आँखा अस्पताल परासी में जाके चेक करवाला।
5: जी हाँ, हमन के विशेषता आधुनिक प्रविधि फेको मशीन से मोतियाबिंदु के ऑपरेशन, आँख में मांस उभरल के ऑपरेशन, टेढ़ मेढ़ आँख के विजन थेरापी द्वारा सीधा बनाए के, बंद भइल आँख के नली खोलले के साथ ऑपरेशन बाद के जाली लेजर विधि से सफा और दक्ष जनशक्ति से आँख के वीडियो एक्सरे कई के कंप्यूटर प्रविधि द्वारा पावर बिना पावर के चश्मा तुरंत तैयार।
6: समय में आँख जाँच करावल जा और आनहर भइले से बचल जा। नेपाल नेत्र ज्योति संघ डॉक्टर विनोद नीता कंडेल अस्पताल परासी। फोन 0785201046 और 0785210033।

0: सुनत बाड़ा हो, हाय टेढ़ मेढ़ दातवा के नाते से हमके बहुत लाज लगला आ तनिको कहूँ जहूँ मन नहीं करला।
1: हाय देखा अब लाज कौन बात की हो, चला तिवारी डेंटल केयर ठूठी बारी में जहाँ विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टर कुशाग्र तिवारी और अनिल कुमार तिवारी द्वारा दाँत सीधा बनाए के काम होला।
2: जी हाँ, ठूठी बारी के ही सबसे पुराना बढ़िया दुकान तिवारी डेंटल में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा बनाए के आरसीटी के उपचार, डेंटल इम्प्लांट, दांत के सफाई, कॉस्मेटिक फिलिंग, मुंह कम खुले वाला समस्या, बच्चा के दांत के इलाज, डिजिटल एक्सरे तथा परामर्श सेवा के सुविधा,
3: साथ में फिक्स दांत रखे खातिर 1000 रुपया में लाइफ टाइम वारंटी, दाँत बनवाए के बाद 1200, दाँत सफाई करे खातिर 160, दाँत लगवाए के 100, दाँत निकाले के 160, दाँत में मसाला भरे के 130 रुपया और शुक्रवार के दिन दाँत निकाले वाला लोगन खातिर निःशुल्क के व्यवस्था। याद रहे सुबेरी 8 बजे से 10 बजे तक दांत संबंधी कोनो भी समस्या के निःशुल्क इलाज।
0: डेंटल खुले वाला समय हर एक दिन सुबेरी 8 बजे से रात के 8 बजे तक। खास जानकारी खातिर तिवारी डेंटल केयर, मेन रोड ठूठी बारी, सहारा बैंक के नीचे। मोबाइल नंबर 9559774700 और 9559544836।
4: के तपाईँ अध्ययनका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमै पहिलो पटक सेवाका लागि हाजिर छ मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी।
5: काठमाडौँको पुतली सडकमा विगत 20 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अब परासीमा खुलेकोले मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्।
4: स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, कोरियाका साथै युरोपका विभिन्न देशमा जान चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको सपनालाई हामी पूरा गर्दैछौँ। साथै कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 50% छुटमा आइएलटिएस, पीटीई र जापानिज भाषाका कक्षा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस अध्ययन गर्न तथा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल कोर्सहरूमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने पनि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनु।
5: थप जानकारी का लागि मिशन डाक्टर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी रामग्राम 5 परासी अदालत को ठीक अगाडि, शाखा प्रबन्धक श्याम कुमार बस्याल, सम्पर्क 9851038135।
3: परासी क्षेत्र में पहला बेर निजी स्वामित्व में संचालित 1500 के सुविधा संपन्न हॉस्पिटल सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली परासी,
0: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा देहता इंसा साहेब हॉस्पिटल परासी में, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजेंद्र यादव द्वारा महिला संबंधी तमाम रोग के चेक जांच तथा उपचार, सामान्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया, बाल रोग तथा शिशु सेवा, लैब एक्सरे, वीडियो एक्सरे, यूएससी, ईसीजी तथा इको सेवा, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, नेबुलाइजेशन सेवा के साथ बिरामी भरना और दक्ष फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा उपलब्ध बा।
3: इतने भर नहीं, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल में बाल बच्चन संबंधी कोनो भी समस्या के उपचार खातिर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज यादव द्वारा खूब बढ़िया से दवाई होता।
6: संपर्क के खातिर जरूर याद रखल जाए, सत साहेब सिटी हॉस्पिटल प्राली, रामग्राम 5 परासी, घंटाघर चौक से 100 मीटर दक्षिण रास्ता के पूर्व साइड। मोबाइल नंबर 9561745737।
7: हेलो, हेमलक ट्राभल्स हो?
8: हो हजुर।
7: सुन्नु न, एउटा दुबईको प्लेन टिकट चाहिएको थियो अनि भैरवा टु काठमाडौँको लागि 2 टिकट पनि
8: भइहाल्छ।
9: हजुर, हेमलक इन्टरनेशनल टुर एन्ड ट्राभल्स भुमैमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट, अनलाइन श्रम स्वीकृति, टिकट कन्फर्म, टुर प्याकेज, होटल बुकिङ, भिजा सर्भिस, अनलाइन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै स्कर्पियो, जीप, कार भाडामा चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्।
8: टिकटको मिति सार्नु परेमा पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। हेमलक इन्टरनेसनल टुर एन्ड ट्राभल्स, सुनोल 12 भुमई, म्यानेजिङ डाइरेक्टर भोला पराजुली, फोन नम्बर 0784150001 र मोबाइल 9857045546।
9: हेमलक, तपाईँको यात्राको विश्वासिलो सारथी।
10: जो कोई को इच्छा सुन्दर घरको लागि सुन्दर रंग।
11: तपाईको घरलाई आकर्षक बनाउन चाहिन्छ इन्डिगो पेंट्स।
10: इन्डिगो पेंट्स को आधिकारिक विक्रेता सत्य भगवती ट्रेडिंग कन्सर्न, कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ, रामग्राम 3 परासी।
11: इन्डिगो को मिराकल लग्जरी इमुल्सन 7 वर्ष वारेन्टी र घर बाहिर लगाउने वालमेट 10 वर्ष वारेन्टी सहित अटोमेटिक मेसिनबाट कलर तयार गरिनुका साथै रङ रोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।
10: इन्डिगो पेन्ट्स सदा बसन्तम।
12: घरलाई कस्तो रङ सुहाउँछ भने निर्माण अगाडि नै प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
13: त्यति मात्रै कहाँ हो र हामी कहाँ पाइप फिटिङ प्लम्बिङका सबै सामान सूर्या ब्रान्डको 7 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी सहितका धाराका सामानका साथै बेनकाडो ब्रान्डका टोयलेट बाथरूमका सामान 2 वर्षको ग्यारेन्टी सहित उपलब्ध छ।
11: साथै स्टिल र प्लास्टिकका ट्याङ्कीका लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।
13: परासीमा घर रङ रोगन प्लम्बिङ र टोयलेट बाथरूमका सबै सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने एकमात्र स्थान
14: सत्य भगवती ट्रेनिङ कन्सर्न कलर हाउस एन्ड सिद्धार्थ प्लम्बिङ रामग्राम 3 परासी पुरानो फिल्म हलको अगाडि।
12: प्रोप्राइटर चन्द्रमणि चौधरी सम्पर्क 0 78 5 20 747 र 98 5 70 46 747।
7: ल बिहेको अरू तयारी त भयो, अब गर गहना।
15: हो नि, अब गहना जस्तो कुरा जहाँ पायो त्यहीबाट किन्नु भएन है
16: बाबा। बाबा गहना त ढकाल ज्वेलर्स भूमिबाटै बनाउनु पर्छ है। अस्ति श्याम दाईको बिहेमा नि त्यहीबाट बनाएको कस्तो राम्रो डिजाइनका गहना थिए नि।
9: विवाह होस् या चाड पर्व, दक्षे कालीगढद्वारा नयाँ डिजाइनका आकर्षक बिना रसायनका शुद्ध सुनचाँदीका गरगहनाका लागि ढकाल ज्वेलर्सलाई नै सम्झनुहोस्। साथै हामी कहाँ गरगहना साटफेर पनि गरिन्छ।
16: सुनचाँदीका गरगहनाका लागि विश्वासिलो ठाउँ ढकाल ज्वेलर्स सुनोल 12 भुमही प्रोप्राइटर कृष्ण ढकाल सम्पर्क 98 677 80 632 98 075 92 211 र 98 495 71 979।
17: अंकल नमस्कार, बहनी बियाह कर द्वारा का।
3: हाँ बेटी, बिटिया सियान हो गई, अब समय में बियाह हो जाते।
17: नहीं अंकल, पहले जैसा समय अब नहीं रह गई, अब ते 20 वर्ष ने पुग के बियाह करे के और कराए के नहीं मिले। कानून विपरीत कैले में सजाए भोगे के परे और उतना भर नहीं छोटहन उम्र में बियाह कई दे के बहनी हिंसा में पड़े वाला प्रबल संभावना भी हुई।
3: ऐसा बात बाटे।
1: हाँ, हिंसा से बचे खातिर और बचावे खातिर आजे से बाल विवाह न कैल जा और न करावल।
6: बाल विवाह कैल और करौले पर 50,000 रुपया 3 वर्ष कैद जरिमाना होखेला। यह नाते अगर ऐसन गतिविधि होई तब नेरे रहल प्रहरी कार्यालय के फोन नंबर से या टोल फ्री नंबर 18 10 50 00 202 में संपर्क करे सकल जाए। इंद्रिणी सामाजिक विकास मंच UMN बाल अधिकार परियोजना और प्रतापपुर गाँव पालिका पश्चिम नवलपरासी द्वारा जारी संदेश।
18: हरे कृष्ण हरे कृष्ण
7: लौ हरे कृष्ण जप्दै कता हिँड्नु भयो बुवा?
18: ए बाबु, नातिको दाँत दुखेर हरे कृष्ण डेन्टलतिर हिँडेको। मैले यही दाँतको समस्याले कति दुःख पाएँ, अब हरे कृष्णमा जाने बित्तिकै ट्वाक्कै ठिक भयो, त्यही भएर नातिलाई पनि लिएर हिँडेको।
13: हो, अब सबैले भन्छन् हरे कृष्ण। हामी कहाँ अत्याधुनिक मेसिन द्वारा दाँतको चेक जाँच गरी बाङ्गोटिङ्गो दाँतलाई सिधा बनाउने RCT डेन्टल इम्प्लान्ट दाँतमा सिमेन्ट भर्ने दाँतको सफाई लगायत दाँत सम्बन्धी हरेक किसिमका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
6: पुनश्च डाक्टर विकास ढुङ्गाना र सन्जु बस्याल सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दाँत मुख तथा गिजाको उपचारमा 25% छुटको व्यवस्था छ।
5: थप जानकारीका लागि हरे कृष्ण डेन्टल प्राली रामग्राम 3 परासी बुद्ध चोक एभरग्रिन हस्पिटल परिसरमा। निर्देशक श्याम कुमार बस्याल 98 510 38 135।

0: जीवनको हरेक रङ्गमा नेपालीपनको मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले साँझको 5 बज्यो।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक,
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी।

0: 90.2 मेगाहर्ज पर रेडियो परासी, नया युग के समावेशी आवाज।
1: भोजपुरी हाल खबर,
2: भोजपुरी हाल खबर,
1: अपने गांव घर और आसपास की ताजा घटना की जानकारी के खातिर हर रोज जरूर सुनल जा।
2: भोजपुरी हाल खबर
1: मात्र रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज पे।

नमस्कार। पश्चिम नवलपरासीकै पहिला रेडियो स्टेसन सामुदायिक रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज और इन्टरनेट अनलाइनकै www.radioparasi.com मार्फत एकैसाथ प्रसारण हो रहल साँझीकै 5 बजेकै भोजपुरी हाल खबरमे हम सुरेश यादवकै तरफसे आपके स्वागत बा। हाल खबर सुरु कइल जा खास खास खबर से। बैरहवामे सील तोड़के टैंकर से डीजल निकाल रहल अवस्था में 3 ठो टैंकर नियंत्रण में, सर्राफ पंप तत्काल के खातिर सीलबंदी, पेट्रोलियम पदार्थ के ढुवानी और नाप जांच प्रणाली के ऊपर प्रश्न। जलवायु परिवर्तन के जोखिम न्यूनीकरण में विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक रहल प्रधानमंत्री शाह के कहनाम, प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में 14.2 अरब जमा। पूर्वी नवलपरासी के नौलपुर में खुरपी प्रहार कई के पत्नी के हत्या, रूपंदेही में कटुआ पिस्तौल सहित 2 जना पकड़ाऊ, शिक्षक छनौट में प्रधानाध्यापक के रिश्तेदार पड़े के बाद पाल्पा में छानबीन करे खातिर मार। और हुलाक से होखे वाला मतदान के सीमित बनाए वाला अमेरिकी राष्ट्रपति के योजना में सर्वोच्च अदालत के रोक, ऑस्ट्रेलिया के चर्चित क्रिकेटर डेविड वार्नर नेपाल प्रीमियर लीग क्रिकेट खेले खातिर नेपाल आए वाला। अब सुनल जा पूरा हाल खबर। रूपंदेही के बैरामा स्थित लुम्बिनी रोड में रहल सर्राफ ऑयल पेट्रोल पंप में टैंकर के सील तथा ताला तोड़ के डीजल निकाल रहल अवस्था में 3 ठो टैंकर नियंत्रण में लिहल गेल बाटे। नेपाल ऑयल निगम के खातिर अमलेखगंज से लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भलवारी में तेल ल्या रहल कैल टैंकर से रास्ता में ही अनाधिकृत रूप में डीजल निकाल गेल सूचना के आधार में प्रहरी उ 3 ठो टैंकर के नियंत्रण में लिहले बाटे। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दांग से खटल गई विशेष प्रहरी के टोली सूचना के आधार में सर्राफ ऑयल पंप में छापा मारक दाइन टैंकर के सील तोड़ के डीजल निकाल रहल अवस्था में टैंकर बरामद भइल बाटे। नेपाल ऑयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भलवारी के निमित्त प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट के अनुसार लु 2 ख 15 44 और लु 1 ख 65 04 नंबर के 2 ठो टैंकर से करीब 30 लीटर डीजल निकाल के ड्रम में रखल अवस्था में मिलल बाटे। यह क्रम में शंकास्पद लौकल दूसर 1 ठो टैंकर समेत प्रहरी नियंत्रण में लिहले बाटे। नियंत्रण में लिहल गई टैंकर थप अनुसंधान के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय रूपंदेही में रखल गई बाटे। घटना के बाद नेपाल ऑयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भलवारी से गई टोली सर्राफ ऑयल पंप में तत्काल सीलबंदी गई बाटे। निगम के निमित्त प्रमुख विष्ट के अनुसार नियंत्रण में लिहल गई टैंकर में से 1 ठो पौडेल ढुवानी सेवा तिलोत्तमा के और दूसर BNC ढुवानी सेवा के रहल बाटे। शंकास्पद अवस्था में नियंत्रण में लिहल गई दूसर टैंकर त्रिमूर्ति ट्रांसपोर्ट सेवा के रहल बाटे। घटना में संलग्न टैंकर के चालक और सहचालक तथा पेट्रोल पंप के संचालक फरार रहल प्रहरी जनौले बाटे। विष्ट के अनुसार अमलेखगंज से भलवारी स्थित निगम के कार्यालय में आके तेल अनलोड करे के परी टैंकर निर्धारित मार्ग छोड़ के दूसरे ओर ले जाके पेट्रोल पंप में डीजल निकाल पावल गई। संबंधित चालक और सहचालक के लुम्बिनी प्रदेश में टैंकर संचालन करे खातिर रोक लगाए वाला किसिम से आवश्यक कार्रवाई समेत होखे वाला बाटे। इससे संबंधित ढुवानी कंपनी के समेत कार्रवाई के लिए सिफारिश करे वाला वहाँ बतौले बने। नेपाल ऑयल निगम ढुवानी के क्रम में पेट्रोलियम पदार्थ चोरी और अनाधिकृत बिक्री होके नहीं दिए खातिर टैंकर में विशेष सील तथा तालाबंदी करे वाला व्यवस्था कैले बाटे। ऐसा सील तथा ताला लोडिंग और अनलोडिंग होखे वाला निर्धारित समय में भर खोले मिले वाला व्यवस्था बाटे। अमलेखगंज से पेट्रोलियम पदार्थ लोड कई के ऑयल टैंकर और बलवारी स्थित निगम के कार्यालय में पुगले के बाद तेल के गुणस्तर तथा परिमाण परीक्षण होला। परीक्षण के बाद भर संबंधित पेट्रोल पंप के पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति करे वाला व्यवस्था रहल निगम जनौले बा। प्रधानमंत्री बालेन शाह जलवायु परिवर्तन के कारण सृजित जोखिम तथा विपद न्यूनीकरण और व्यवस्थापन के पक्ष में विश्वव्यापी सहयोग और सहकार्य के आह्वान करे वाला बतौले बने। प्रधानमंत्री शाह मुस्तांग में आयोजित घरप झोंग जलवायु सम्मेलन के क्रम में पठावल शुभकामना संदेश में जलवायु परिवर्तन से होके वाला असर के न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी विषय विश्व समुदाय के साझा जिम्मेवारी रहले से समाधान के खातिर विश्व के ध्यान आकर्षण कराए के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बने। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के 81वीं महासभा में जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल सहे के परल समस्या क्षति और समाधान लगायत के विषय में विश्व समुदाय के ध्यान आकर्षण कराए वाला प्रतिबद्धता व्यक्त कैल शुभकामना संदेश में उल्लेख बाटे।
ऐसे कहके जलवायु परिवर्तन से नेपाल के हिमाली पहाड़ी और तराई क्षेत्र में पड़ रहा गंभीर असर के बारे में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान आकर्षण कराए वाला भी प्रधानमंत्री के कहनामबाट विश्वव्यापी रूप में तापक्रम वृद्धि होत के दायन हिमाल बगले वाला हिम चट्टान फूटे वाला हिम नदी के बहाव बढ़े वाला पानी के मुहान सुखात जाए वाला और मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन आए वाला लगायत के समस्या हिमाली क्षेत्र सहित समग्र नेपाली लोगन सहे के परल और जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय के जनजीवन कृषि जैविक विविधता में समेत असर पड़े के शुरू भइल प्रधानमंत्री शाह बतौले भने हिमाली जिला मुस्ताङ के जोमसोम में घरब झोंग जलवायु सम्मेलन आयोजना भइल में खुशी व्यक्त करत हुआ जलवायु परिवर्तन के असर सामना करे वाला काम में संघ प्रदेश और पालिका बीच बलिगर सहकार्य होके खातिर आवश्यक रहल उल्लेख कैले भने घरब झोंग गाँवपालिका आयोजना कैल दुई दिने सम्मेलन के आज कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी उद्घाटन कैले बाड़िन। सम्मेलन में देशभर के ढेर जैसन गाँवपालिका के प्रमुख तथा नगरपालिका के मेयर एवं जिला समन्वय समिति के प्रमुख लोगन के सहभागिताबाट हिम पहिरो से भोटे कोसी होत त्रिशूली नदी में गई बाढ़ी से अपूरणीय जनधन के क्षति सहित भौतिक संपत्ति में समेत क्षति पुगावल तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के 81वीं महासभा में प्रधानमंत्री शाह संबोधन करे वाला कार्यक्रम सहित व्यापक तैयारी हो रहा अवस्था में इस सम्मेलन के महत्व के साथ देखल गई बा। प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में 14,02,73,00,000 रुपया जमा भइल बाटे। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय अनुसार आज सुबेरे 9 बजे तक के विवरण अनुसार तमाम 9 ठो बैंक में 10,40,49,00,000 रुपया जमा भइल बाटे। ऐसे कोष के अन्य 2 ठो बैंक में रहल डलर खाता में 2,37,00,000 अमेरिकी डलर जमा भइल बाटे। राहत कोष से रसुआ के भोटे कोसी नदी में आयल बाढ़ी से पीड़ित लोगन के राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत इससे पहले 1 अरब रुपया निकासा हो चुकल बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस प्रधानमंत्री के साथ संवाद के प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रखेगी और सांसद लोगन के प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रखेगी और बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र में राहत उद्धार पुनर्निर्माण के लिए संसदीय उच्च स्तरीय समिति गठन करे वाला विषय में ध्यान आकर्षण कराओल गई बाटे। प्रतिनिधि सभा के सभामुख डोल प्रसाद हरियाल डीपी आज भइल भेट में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता भीष्मराज आङदेम्बे ऊ विषय में ध्यान आकर्षण करौले भने नेता आङदेम्बे के अनुसार विगत में तय होके नाइ सकल प्रधानमंत्री के साथ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम कार्यसूची में रखे खातिर सरकार के साथ समन्वय करे के लिए सभामुख हरियाल के ध्यान आकर्षण करौले भने गैलका 10 गते भादो में संसद में प्रधानमंत्री बालन शाह के साथ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रखल गेल में उक्त दिन भोटे कोसी बाढ़ी के कारण कार्यक्रम प्रभावित बनल रहल। नेता आङदेम्बे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम प्रधानमंत्री शाह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के खातिर संयुक्त राज्य अमेरिका गैले से पहले रखे खातिर आग्रह कैल और ओमे सभामुख अरियाल सकारात्मक रहल जानकारी दिले भने आङदेम्बे सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के तरफ से आयल प्रस्ताव बमोजिम बाढ़ी बात की अवस्था के समग्र अगुवाई करे खातिर उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र बनाए खातिर अपने लोगल कैल सहमति भी पालना होके के परि में जोड़ दिया गई बा। पूर्वी नवलपरासी के विनय त्रिवेणी गाँवपालिका 3 चीसा पानी में पति खुरपा प्रहार करत पत्नी के घटनास्थल में ही जान गई बाटे। आज सुबेरे करीब 9 बजे के समय में 43 वर्षीय शेर बहादुर बिक अपन पत्नी 40 वर्षीय उनी माया बिग के गटई में खुरपा प्रहार कैले रहलन। खुरपा प्रहार से गंभीर घायल भइल उनी माया के घटनास्थल में जान गई। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर के प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार खड़का जानकारी दिले भने उनी माया शेर बहादुर के छोट पत्नी रहलिन। घटना के खबर प्राप्त भइले के बाद अस्थायी प्रहरी पोस्ट सर्दी से प्रहरी नायब निरीक्षक सीताराम चौधरी के कमांड में टोली घटनास्थल में पुगल रहल। प्रहरी के टोली घटनास्थल में सम्मलन शेर बहादुर बिका के नियंत्रण में लेके थप अनुसंधान के खातिर इलाका प्रहरी कार्यालय दुमकी बास में ल्यावले बाटे। घटना के बारे में अनुसंधान चल रहल प्रहरी निरीक्षक खड़का बतौले भने यहाँ जिला प्रहरी कार्यालय रूपंदेही कटुआ पिस्तौल सहित 2 जना के पकड़ाऊ कैले बाटे। ओमसतिया गाँवपालिका 6 नारायणापुर स्थित 23 वर्षीय अमन कुमार धवल के घर में कटुआ पिस्तौल लुका रहल अवस्था में गोप्य सूचना पौले के बाद इलाका प्रहरी कार्यालय दगदही के प्रहरी निरीक्षक राम भक्त भट्टराई के कमांड में खटल गई टोली खान तलाशी करत के दौरान 1 थान पेटुआ कटुआ पिस्तौल और 25 राउंड छर्रा
गोली बरामद कैल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही जनौले बाटे प्रहरी घटनास्थलमे संलग्न रहल आरोपमे अमन कुमार धवल और उही स्थानके 20 वर्षीय सुनिल केवटके नियन्त्रणमे लिहले बाटे पक्राउ परल लोगन दुनो जनाके उपर थप अनुसन्धान हो रहल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीके प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर शाही जानकारी दिएले बाटे। पाल्पाकी रिब्दीकोट गाउँपालिका 6 ठिमुरे स्थित दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालय देउराली के आधारभूत तह कक्षा 105 के खातिर अस्थायी करार शिक्षक नियुक्ति के लिए लिहल गेल परीक्षा के निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न उठावत परीक्षार्थी लोगन छानबीन के खातिर जिला प्रशासन कार्यालय पाल्पा में निवेदन दिएले बाने। परीक्षा में सहभागी 41 जना में से 2 जना भर उत्तीर्ण भइल रहलन। दुनो जना उत्तीर्ण भइल आदमी लोग विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम बहादुर खत्री के रिश्तेदार होने ओमे से 1 जना सहोदर बहिनी और दूसर नेरे के रिश्तेदार रहल। प्रशिक्षार्थी लोग बतौले बने स्वार्थ के द्वंद्व भइल कहत अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी लोगन निष्पक्ष छानबीन के माँ कैले बने परीक्षा निष्पक्ष नाई भइल आशंका करत उ लोगन परीक्षा प्रक्रिया छानबीन कहके पुनः सञ्चालन करे खातिर माग रखले बने। परीक्षा में सहभागी मनीषा आले प्रधानाध्यापक के नेरे के 2 जना परीक्षार्थी भर उत्तीर्ण भइल बताउले बने। निशा नेउपाने लगायत के परीक्षार्थी लोगन समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत निष्पक्ष छानबीन के माग कैले बने। अनिशा मिया तिर्सना गाहा कल्पना बगाले निशा नेउपाने रविन पाण्डे लगायत प्रथम पत्र वस्तुगत परीक्षा के उत्तर पुस्तिका पुनर्योग्य माग समेत कैले बने। परीक्षार्थी लोगन परीक्षा संचालन में संलग्न विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम बहादुर खत्री विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष चेत बहादुर उचै गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजाराम भाट विषय विशेषज्ञ मदन नेपाल और देवराज घिमिरे तथा गाउँपालिका के शिक्षा स्रोत विज्ञ गोपाल बहादुर केसी के भूमिका के ऊपर समेत प्रश्न उठल बाटे। विद्यालय प्रधानाध्यापक खत्री के नेरे के रिश्तेदार उत्तीर्ण भइल विषय में गाउँपालिका के प्रवक्ता एवं उहे वडा के वडाध्यक्ष प्रकाश राय माझी परीक्षा के प्रथम पत्र में 2 जना भर उत्तीर्ण भइल बने ओमे भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के ही नेरे के आफन्त परल में परीक्षा प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न उठबे करी वहाँ कहना परीक्षा के साथ संबंधित सब पक्ष के ऊपर छानबीन करे के और परीक्षा स्थगित करके पुनः परीक्षा लिए के परी बताओले बने। शिक्षा शाखा प्रमुख भाट प्रधानाध्यापक के रिश्तेदार परीक्षा में सहभागी भइल होई तब समिति से सो घोषणा कैके अलग बैठे के परी बताओले बने। वहाँ के अनुसार सीसी कैमरा के निगरानी में परीक्षा संचालन भइल रहल। परीक्षा प्रक्रिया के ऊपर उजुरी पड़े के बाद जिला प्रशासन कार्यालय पाल्पा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के विषय में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भूषाल के निष्पक्ष छानबीन के खातिर निर्देशन दिएले बाटे। प्रमुख जिला अधिकारी भविश्वर पांडे प्रक्रिया आगे नाई बढ़ाए खातिर इसे पहले ही निर्देशन दे चुकल बाने। उत्तर पुस्तिका में समेत कैफियत लौकित विज्ञ लोगन के भी कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ाए वाला बतौले बने। निवेदन में उठल विषय में छानबीन के बाद भर परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष भइल नाई भइल तथा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाए के बाद पुनः परीक्षा संचालन करे वाला विषय में निर्णय होखे के वहाँ के कहना बा। अब सुनल जा अंतर्राष्ट्रीय खबर। हुलाक से होखे वाला मतदान के सीमित बनाए वाला ट्रम्प के योजना में सर्वोच्च अदालत रोक लगौले बाटे। न्यायाधीश लोगन संघीय न्यायाधीश के आदेश के सदर करे कि जैसे अमेरिकी हुलाक सेवा के हुलाक से होखे वाला मतपत्र संबंधी नया नियम लागू करे वाला से अस्थायी रूप में रोक लगौले बाटे लेकिन ई विषय में सर्वोच्च अदालत के अंतिम निर्णय ना आयल बाटे। ट्रम्प प्रशासन के योजना अदालत अस्वीकार कैले के बाद लाखों मतदाता लोगन हुलाक मार्फत मतदान करे वाला अधिकार तत्काल कायम रहे वाला बीबीसी जनौले बाटे। 9 सदस्यीय अदालत के 6 कंजरवेटिव न्यायाधीश लोगन में से 2 जना निर्णय प्रति असहमति जनौले बाने। न्यायाधीश ब्रेट काभानक ट्रम्प के योजना भविष्य में कानूनी होके सके वाला भइले पर भी राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी लोगन चुनाव पहले ही ओके कार्यान्वयन करे खातिर पर्याप्त समय नाई रहल बताले बने। ट्रम्प गैलका मार्च में हुलाक से करे वाला मतदान के सीमित बनाए वाला कार्यकारी आदेश जारी कैले रहलन। वहाँ कोनो ठोस प्रमाण बिना हुलाक मार्फत होके वाला मतदान में धांधली के जोखिम रहल दावी समेत कैले रहलन। अन्त्यमेठो खेल प्रसङ्ग। अस्ट्रेलिया के चर्चित क्रिकेटर डेभिड वार्नर नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल खेले खातिर नेपाल आएवाला बने। एनपिएल के टोली काठमाडौँ गोर्खाज 3रा संस्करण के खातिर वार्नर के अनुबन्ध कैल सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनौले बाटे। 39 वर्षीय डेभिड वार्नर एनपिएल खेले खातिर आएवाला हाल तक के सबसे बडा नाम हो। यसै पहिले पहिला संस्करणमें कडाली याक्स भारत के शिखर धवन 2रा संस्करणमें विराटनगर किङ्स दक्षिण अफ्रिका के फाप डु प्लेसिस के अनुबन्ध कैले रहल। वार्नर 110 टी20
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमै एक शतक और 28 अर्धशतक सहित 3,277 रन बनाउले भने यसै उहाँ समग्रमै 439 टी ट्वेन्टी क्रिकेटमै 10 शतक और 118 अर्धशतक सहित 14,284 रन बनाउले भने डेभिड वार्नर अस्ट्रेलियाकै खातिर सन् 2015 और 2023 एक दिवसीय विश्वकप सन् 2021 टी ट्वेन्टी विश्वकप और सन् 2023 विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप जितले रहने वार्नरकै साथ भारतकी आइपिएल अस्ट्रेलियाकी बिबिएल वेस्ट इन्डिजकी सिपिएल लगायतकी टी ट्वेन्टी लिगकी खेलकी अनुभव समेत भयो। हाल खबरकी अन्तमै खास खास खबर फेरि एक बेर। बैरहवामे सिल तोड़के टैंकर से डीजल निकाल रहल अवस्था में 3 टैंकर नियंत्रण में सराफ पेट्रोल पंप तत्काल के खातिर सीलबंदी पेट्रोलियम पदार्थ के ढुवानी और नाप जांच प्रणाली के ऊपर प्रश्न। जलवायु परिवर्तन के जोखिम न्यूनीकरण में विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक रहल प्रधानमंत्री शाह के कहना प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में 14.2 करोड़ जमा। पूर्वी नवलपरासी के नवलपुर में खुरपा प्रहार के पत्नी की हत्या रूपंदेही में कटुआ पिस्तौल सहित 2 पकड़ाओ शिक्षक छनौट में प्रधानाध्यापक के रिश्तेदार पड़ने के बाद छानबीन करे खातिर मांग। और उलाख से उखे वाला मतदान के सीमित बनाए वाला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के योजना में सर्वोच्च अदालत के रोक ऑस्ट्रेलिया के चर्चित क्रिकेटर डेविड वार्नर नेपाल प्रीमियर लीग खेले खातिर नेपाल आए वाला। यही के साथ ही आज के भोजपुरी हाल खबर पूरा भइल। अपन गाँव समाज के खबर के लिए सामुदायिक रेडियो परासी सुनत रहल जाई। सुरेश यादव विदा होत बाड़ी। नमस्कार।

0: ओम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ओम आयल स्टोर परासीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ पेट्रोल डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। स्थान ओम आयल स्टोर, रामग्राम पास परासी बाइपास रोड, हाट बजार नजिकै। संचालक वीरेन्द्र यादव, सम्पर्क नम्बर 98570-23031।
1: ए सुन न, खाजा खान जाऊ न, यसो लास्टै भोक लाग्यो भने।
0: जान त जाऊ, अलि टिपिकल अनि लोकल मिठो आइटम पाउने ठाउँमा जाऊ न।
1: ए कुरो त्यसो पो, त्यसो भए जाऊ न त आरआर।
2: लोकल कुखुराका विभिन्न आइटम, माछाका परिकार, हाँस तथा खसीको मासुका विभिन्न आइटम, मोमो चाउमिन सहित भेज स्टिक, केराका विभिन्न परिकार, ससेज, भेज तथा नन भेज लगायतका विभिन्न आइटम सहित शान्त सुन्दर वातावरणमा एसी सहितका कोठाको साथमा खाना नास्ता र बासका लागि तपाईँको रोजाईको पोइन्ट नवीन दाईको आरआर सेन्टर पोइन्ट।
0: सम्पर्क आरआर सेन्टर पोइन्ट, रामराम 11 जमुआर, हुलास अटोक्राफको ठिक अगाडि। मोबाइल 98570-46130 र 98044-00067।
3: के भएको यस्तो? नजिक मोबाइल ल्याउँदा देख्छु, थोरै टाढा लाँदाखेरि देख्दिन त।
1: ए सुमी, पहिला त मोबाइल कम चला हो, दोस्रो आँखा चेक गराइहाल क्या।
3: चेक गराए पनि त्यही चस्मा नै दिने त हो नि।
1: त्यस्तो होइन नि, अनुभवी नेत्र विशेषज्ञबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उपचार हुने रामग्राम आई केयर परासीमा जाऊ न।
2: हो, रामग्राम आई केयर सेन्टर परासीमा श्रीकृष्ण नेत्रालय भैरवमा कार्यरत अनुभवी नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर अमृत बास्तोला र कोलकाता तथा भैरव आँखा अस्पतालमा काम गर्नुभएका दृष्टिरोग विशेषज्ञ काशिन्द्र शर्माबाट आँखा जाँच गरिन्छ। आधुनिक प्रविधि, फेको मेसिनबाट मोतियाबिन्दुको अपरेसन, आँखामा मासु पलाएको अपरेसन, बाङ्गो टिङ्गो आँखाको भिजन थेरापीद्वारा सिधा बनाउने, बन्द भएको आँसुको नली खुलाउनुको साथै अपरेसन पछिको जाली लेजर विधिबाट सफा गर्ने र दक्ष जनशक्तिबाट आँखाको भिडियो एक्सरे गरी कम्प्युटर प्रविधिबाट पावर बिना पावरको चस्मा तुरुन्तै तयार गरिन्छ।
0: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त आँखा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि
2: रामग्राम आई केयर सेन्टर प्राली, रामग्राम 3 परासी मालपोत जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल 98119-069-17 र 98695-34254।
4: चाची, रुमवा बहुत सफा बा हो और सुगंध भी बड़ा खुशबूदार आवता।
5: हाँ बाबू, महावीर इंटरप्राइजेस से टाइल क्लीनर और रूम स्प्रे लगवैली है, बहुत बढ़िया बटलही बा।
6: जी हाँ, आप सब भी घर सफाई के खातिर वाइपर पोछा, टाइल क्लीनर, रूम स्प्रे, हार्पिक, हैंड वॉश, टॉयलेट ब्रश, कार्यक्रम भोज के खातिर सिल्वर पाउच, नेपकिन पेपर, गिलास, प्लास्टिक के झोरा, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, स्टूल, बाल्टी, ऐसे गल्ला के काम करत के बोरा सीए वाला सुतरी, सुज्जा, परखी, चोंगा पहले के साथ, किचन संबंधी कुकर, डेक्ची, थरिया, प्लेट, गिलास लगात के सामान खातिर जरूर समझल जा।
7: संपर्क के खातिर महावीर इंटरप्राइजेस, रामग्राम 5 परासी, अग्रहरी पेट्रोल पंप के पूर्व साइड, फोन 0785-20-21 और मोबाइल 98575-47766।
8: अरे वाह, देखा थी, बहुत बढ़िया घर बनवा वाला हो।
9: हाँ, घरवा तो बढ़िया ने बन गई, लेकिन देखते बड़ा टाइल, मार्बल और डेकोरेशन के सारा काम बाकी बा।
8: चला, इतना बढ़िया सोच तोहर, रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर ही पूरा कर सके।
10: जी, हमन की यहाँ टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, टोटी, बाथरूम फिटिंग, किचन डेकोरेशन, मोटर, पानी टैंकी, शावर, मिक्सर, सीसा, टेबल टॉप, कम्बोर्ड सीट, CPVC, PVC पाइप लगाए तमाम सामान थोक तथा खुदरा बिक्री होला।
11: संपर्क रघुकुल सेनेटरी एंड हार्डवेयर हाउस, मेन रोड ठूठी बारी, साहिल टायर हाउस के बगल में, प्रोप्राइटर चंचल। मोबाइल 91-20-42-52-31।
12: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ट्ज़, प्रगति।

0: जीवन को हर एक रंग में नेपालीपन को मिठास रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: अहिले साँझको 6 बज्यो।
2: Extreme energy drink.
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
4: Radio Parasi 90.2 MHz. Pragati

0: फोन 078-520-8081।
1: साथ ही हाम्रो शाखा सुनवल 12 भूमैमा पनि छ। सम्पर्क फोन 078-590-588।
2: रेडियो परासी 90.2 मेगाहर्ज प्रगति को संवाहक।
3: हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, इनडीड, इनडीड,
4: एक्मी,
3: फार देयर, राइट हियर।
4: ACME Wi-Fi Internet.
3: MPLS Data Connectivity. Cable Internet serves you always.
4: ACME.
3: With you always, everywhere.
4: Contact 078-57-00-73.

0: तहके मालूम बा हो मैडम, कपड़ा के साफ और चमकदार बनावे खातिर हरदम सफेद वॉशिंग पाउडर ही लगाए के चाहिए।
1: सही कहला हो, सफेद सर्फ कपड़ा के मुलायम बनवले के साथे सुगंध भी बहुत अच्छा देला।
2: जी हाँ, चाहे वॉशिंग मशीन के खातिर होखे वा हाथ से कपड़ा धोए के लिए एक बेर जरूर प्रयोग कइल जा सफेद सर्फ, जवन ठूठी बारी बरगदमा लगायत गांव से लेके शहर बाजार तक हरेक दुकान पर उपलब्ध बा।
0: पुनश्च सफेद वॉशिंग पाउडर आधा केजी से लेके 1, 2, 3, 4 केजी तक बाजार में उपलब्ध बा। साथ में 4 केजी सर्फ खरीद कइले पर प्लास्टिक के बाल्टी फ्री।
1: उत्पादक शांतिनाथ डिटर्जेंट प्रणाली कलकत्ता भारत, संपर्क के लिए व्हाट्सएप नंबर +91 78 80 91 99 84।

0: गोवर्धन चाचा, घरवा कब बनी हो?
1: ए बाबू, हमन के गरीब आदमी, लोहा लकड़ इतना महंगा बा, सोचले रहनी कि नवे छावे के, लेकिन
0: लेकिन का हार्डवेयर से नया खरीदल जाते महंगा पड़ी। यही से परासी बाईपास रोड में बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल खुलल बा। वहाँ आपके मीडियम साइज के रिजेक्टेड माल के साथे पुराना और नया भी एकदम सस्ता में मिलेला। एक बार जाके तो देखी।
2: जी हाँ, पाइप, एंगल, करकट पाता, टीन, छड़, प्लेट, ग्रिल पत्ती एकदम सस्ता दाम में बिक्री आ खरीदारी भी कईल जाला।
3: संपर्क खातिर
2: सिद्धि विनायक ट्रेडर्स एवं कबाड़ पसल, रामग्राम 5 बाईपास रोड, बाल गोविंद पेट्रोल पंप के सामने, प्रोप्राइटर चंदू चौहान। मोबाइल 9834768730 और 9194960630।